सुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम न होई। तू करता करणा में नाही जाहो करी न होई। बलिहारि कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहो। जात मह जो जोत मह जाता कलकला पर पूर रहा। तू सच्चा साहेब सिर्फ सवाल लो जिनकी।

जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आपो अपनी बूझ उचारै।

वो आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पेन पेन तो है तेती तुम्हारा लखा ना जाए पसारा केह बेद सजा प्रथम संसारा एक रू

तज किनी उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो

असिख संगर दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे।

कहै नानक सुनो संतो शब्द धरहु प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै।

तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो।

मैं सुख कने कोई न जाने तुरा अंत ऊचे दे ऊचा भगवंत सगल समागिरी तुमरा सुतरताई तुम ते हो ऐसो आगे आकाश।

0: आकर गुरु कर गीतार जगदीच बोले सुनहार सात्रियाकाल।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।

0: राखो शरणाई। एहनस सहज सुभाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण हो वैसे पुत कसम दी हरसों पुरुषों करती है खुद जिते सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म हो वैसे पुत कसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है पातशाह सिरसाहां दे साहो जिस पास बैठे आ सोही है सब नादा वेसा हो क्या सोही है सब नादा वेसा हो सतना वाहिगुरु साहिब जी तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलहारी गुर अपने गुर को बल जाइया हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलहारी गुर अपने गुर को बल जाइया आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहा हर के गुण हर पाम दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाणा मन्या तिन कुम कुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाइये गुरमुख निस्तार जो हर नाम त्याए दे ते जन परवाना तिन विट्टो नानक वारिया सदा सदा कुर्बान साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रभ पावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पाव जिना हर से ती फिर हड़ी तिना जी प्रभ नाले ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले जिन गुरमुख प्यारा सेवया तिन कुम कुम जाया ओए आप छुटे परवार स्यों सब जगत छड़ाया गुरु प्यारे हर सेवया गुर तन्नो गुर हर मार्ग दसया गुर पुन वड पुन्नो जो गुर सिख गुर सेम दे से पुन पराणी जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी गुरमुख सखी सहेलिया से आप हर पहिया हर दरगह पैनाइया हर आप गल लाई जो गुरमुख नाम तिहाए दे तिन दर्शन दीजे हम तिनके चरण पखाल दे धूड़ कोल कोल पीजे पान सुपारी खातिया मुख बीड़ियां लाइया हर हर कदे न चेते ओ जम पकड़ चलाई जिन हर नामा हर चेतिया हिरदे उरतारे तिन जम नेड़ न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निधान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुरु भेटिया रंग रलिया माने सतगुरु दाता आखिए तुस करे पसाओ हों गुरु विट्टो सदवारिया जिन दितड़ा नाम सो धन गुरु शाबाश है हर दे सनेहा हो वेख वेख गुरु विगसिया गुरु सतगुरु देहा गुरु रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुरु मन्या तिना भुख सब जावी हर का मार्ग आखिए कहो कित विद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरुमुख हर आराध्या से सहा वडदाने हों सतगुरु को सदवारिया गुरु बचन समाने तू ठाकुर तू साहेबो तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलहारी गुर आपने गुर को बल जाइया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेवे नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जास विषम पर एक है नाम जपत अगनत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुदाख्यर किने राम नाम एक आख्यर किनका एक जी बसावे ताकि महिमा गनी न आवे काकी एक है दरस तुहारो नानक उन संग मोहि उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहो प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे प्रभु के सिमरन दुख जम न सह प्रभु के सिमरन काल पर हरे प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे प्रभु सिमरत कछ बिगड़ न लागे प्रभु के सिमरन अनदिन जागे प्रभु के सिमरन तो न व्यापे प्रभु के सिमरन दुख न संतापे प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभु के सिमरन हृदय सिद्ध नव निधि प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु के सिमरन जप तप पूजा प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा प्रभु के सिमरन तीरथ स्नानी प्रभु के सिमरन दरगह मानी प्रभु के सिमरन होय सो भला प्रभु के सिमरन सुफल फला से सिमरे जिन आप सिमराय नानक ताके लागू पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु के सिमरन उधरे मूचा प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभु के सिमरन सब की सुझे प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाय प्रभु जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरे से धनवंते प्रभु को सिमरे से पतवंते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरुष प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमुताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला, प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सदबलहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कभू न चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुणबानी, प्रभु के सिमरन सह समानी, प्रभु के सिमरन नेचल आसन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन, प्रभु के सिमरन अनहर चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभु माया, नानक तिन जन सन नी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लगभे दुपाए, हर सिमरन पय सिर जति दाते, हर सिमरन नी चौं कुंड जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगला कारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसा बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख भजना, घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी, आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी। जय मात पिता सुत नित न पाई मन, उहा नाम तेरे संग सहाई, जय महा भयान दूत जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे तो भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंद ना परे, हर का नाम जपत निस्तरे, अनक माया रंग तिक ना बुझावे, हर का नाम जपत अगावे, जे मार्ग इह जाति केला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याहिए, नानक गुरुमुख परमगत पाइये, छूटत नहीं कोट लखवाही, नाम जपत तह पार पराही, अनक बिघन जाय संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे, अनक जोन जन में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मन कबू न तोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग, जय मार के गनी जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जय पेंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पद तेरा को ना सिंजा, नू हर का नाम तेह नाल पछानू, जय महा पयान तपत भव काम, तेह हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जा त्रिखा मन तुझ आ करखे, तेह नानक हर हर अमृत बरखे, भगत जना की बर्तन नाम समझना, कह मन विश्राम, हर का नाम दास की ओठ, हर के नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर अवकत साध कमात, हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नोदान, मंतन रंग रत्ते रंग, एक के नानक जन के विरुद्ध विवेक, हर का नाम जन को मुकत जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कपरे न पाले, हर का नाम जन की बढ़ियाई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कचना ही वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभु दीना, हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रसमाते, आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुकत भव करे, नानक जन संग केते तरे, पार जात इव हर को नाम, काम तेन हर हर गुणगाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड भागी पाइये, संत की सेवा नाम ते आइये, नाम तुल कछवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई सलोक, बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडो, पूज सुनाई हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मधे फिरया, अनेक प्रकार के वो जतना पुन दान हो मैं, भव रतना शरीर कटाए हो मैं, कराति व्रत नियम करे भो पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महावदास्त पीसर थी वैन अगन माही होमत प्राण, कनक असव हैवर पोहम दा, न्योली करम करे भो आसन, जैन मार्ग संजम असाधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तो पी होमे मैल न जावे, ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਦ ਕਛ ਨਾ ਆਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੇ ਗਰਬ ਗੁਮਾਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨ ਸਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮਹਿਨਾ ਤੰਤੇ ਜਾਤ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਭੂ ਨਾ ਵਿਖਿਆ ਟਰੇ ਜਲ ਤੋਵੇ ਬਹੁ ਦੇ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਰਤ ਬਹੁ ਮੂਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮਕਾ ਪੋ ਵਿਆ ਭਿਆਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਤ੍ਰਾਪੇ ਅਪੇਕ ਅਨੇਕ ਅਗਨੀ ਬੁਝੈ ਕੋਟ ਉਪਾਦਰ ਗਏ ਨੀ ਸੀ ਜੇ ਛੂਟ ਸੁਨਾਈ ਉਪਿਆਲ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਧਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦਗਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹੋਮੇ ਛੋਰੇ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੈ ਜੇ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਲ ਜਾਸਾ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟਾ ਅਭਿਮਾਨ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪੁ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ ਨਿਰਤਨ ਕੋ ਦਮ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸਵਾਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਵੀ ਆਪਣੀ ਗਦਮਿਤ ਜਾਨੋ ਆਪੇ ਆਪਨ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰਨਾ ਜਾਨਸ ਕੋ ਸਰਵ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲਹਿਰਿਆ ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸੁੰ ਵਸਨ ਬਖਾਨੀ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਘਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਐਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਰੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਰਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਜਿੰਤੂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ ਭਰ ਜੋਵਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਵਸੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਵਸੈ ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਪੰਥਾ ਸੰਘਸੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੇ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਫ ਬਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਦਸਣਾ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾੜ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਤਿਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਗਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਵਨੀਤ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਲੇ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਦਾ ਜਾ ਨਾ ਦੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਟਹਿਲ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਤਿਸਹਿ ਵਿਸਾਰੇ ਮੁਗਦ ਅਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗਰਚੈ ਸਾਚ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗਮਚੈ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸਵਸਥਿਰ ਕਰਮਾਨੇ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪੁਰਾਣੇ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੇ ਜਦ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੇ ਤੋਹੇ ਗਰਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਪਸੰਦ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾੜ ਲਿਹੁ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹਿ ਦਿਨਾਥ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਫਸ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਰੇ ਛਪਾਏ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੇ ਲੋਭ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਭਾਰਤਨ ਸਵਾਗਲ ਪਾਤਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਅਥਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭਾ ਆਪੂ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿ ਸਮਾਸ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੁ ਓੜ ਨਿਭਾਵੇ ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝੇ ਡੋਰਾ ਨਿਸਕਹੀਏ ਤੋ ਸਮਝੇ ਪੋਰਾ ਕਹਾ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੇ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੇ ਤੋ ਪੀਸੁਰ ਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਉਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੇ ਸੰਗ ਸਾਹਿ ਸੁਹਾਵਨ ਚੀਤ ਜੋ ਬੈਰਾਜ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਬਲਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਵਸੈ ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਮਾਨੇ ਮਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂਲੋਭ ਤੁਰੋਂ ਇਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਲਿਹੋ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਹਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤਮੀ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆਂਸੂ ਆਏ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਸੀ ਜਹੀ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਪਤ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त्र कारण बिखोड गवावे, एक पीना दे दस पीहीर ले तो मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको की जय सद नमस्कार, जाके मन लागे ब्रह्म मीठा, सर्व सुख ताहु मन भूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगनत साहू अपनी दे रास, खात पीत करते आनंद उलास। अपनी अमान कछ बाहुर साहू लिया, ज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रति ताफी को बहुर उसका विश्वास ना होवे। जिसकी वस्त्र आगे रखे प्रभु की आज्ञा माने माथे, उसते चौगन करे निहार। नानक साहिब सदा दयाल, अनक अनक महात्माया के हेत, सर पर होत जाना नेत। बिरखी छाया से रंग लावे, ओ बिन से ओ मन पछतावे, जोदी से सो चंदन हार, लपट होते अंधार बटाऊ सु जो लावे ने। ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब संभाया, मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राजो बंधन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या हस्त मिथ्या हथ हस्ती असो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्त्यम हस्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण। नानक जब जब जीव हर के चरण, मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर द्रव को हिरे, मिथ्या नेत्र पेखत पेखत पर त्रिय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या वास लेत विकारा, बिन बुझे मिथ्या सब पहे सफल देहे। नानक हर हर नाम लये, बिरथि सागत की आरजा, साच बिना कह होवत सुचा बिरथा, नाम बिना तन अंध मुखाव, ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा विहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो कृपन के निरारत दाम। तन तन ते जन जे घट वस्यो हर नाव, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कछ अवर कमावत, मन्ने प्रीत मुखो गण लावत, जानन हार प्रभु परवीन, बाहर फेंक न कहो पीहीन। अवर उपदेश आप न करे आवत जावत, जन्म मरे जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेनती पार प्रभु सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत, नहीं रहो पाव से अनब सगलते रहत, सब किस जान आत्म की रहत। जिस पावे तिसले लड़वाए थान थरंत रहत, समाए सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जपना न करी चलो, काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमे, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपति। जे प्रसाद सत्य अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माए, जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परमगत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर, जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर, सिमरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्या मन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्यागत अवर लुभावे, जे प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पहर, ताका जिसका भी जय। जे प्रसाद तुझ सबको माने, नुकता को जस रसन बखाने, जे प्रसाद तेरो रहता तरा मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जब अतर गए मान पावे, नानक पद से ती कर जावे, जिस जे प्रसाद आरो कंचन दे ही लेव लाओ तिसराम से नहीं, जे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे, हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर, ठाकुर प्रभु ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभु जी, जे प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आप भूखन पहरी जय मन तिस सिमत की वालस की, जय जय प्रसाद अस हस्त असवारी, मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी। जय प्रसाद बाग मिलक तना राख पर प्रभा बनी, मना जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सत्य जय तिहाई। तिसे तिहाय जो एक लख यहाँ हुआ, नानक तेरी रखे जय प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका हर कर तिसका ध्यान, जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी। जे प्रसाद तेरा प्रताप, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप, जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद, नानक जस कह जे प्रसाद सुने करन नाथ, जे प्रसाद पिख है बिस्मार, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चले, जे हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले, जे प्रसाद परम गति पावे, जे प्रसाद सुख से समान, जे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागू गुरु प्रसाद, नानक मन जागो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल ना मनो विसार, जे प्रसाद तेरे कर वे मन मूर तो दाग जाप, जे प्रसाद
1: तेरे कार पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पावे साच, जे मन मेरे तू तां सिंह राज,
0: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲਗੈ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨਕੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣੈ ਕੌਣ ਪੁਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਤਹੂੰ ਤਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋ ਤਾਪ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਤੁਜੈ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਦਬਹੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਗੁਰਬਾਨ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੋਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਸੈ ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਵਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇ ਤਾ ਬਕਿਆਨੈ ਹੈ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸੁਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ

चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रकाश, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पये, नानक जिन पर व्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो पड़ा, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अजिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोज है महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मनमा है। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का

ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, श्लोक उरतार है जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख नामक ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रय रूप न पेख है नेत्र, सादगी टहल संत संग हेत, करण न सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरय, मन की वासना मन ते टरय, इंद्रिय जित पंच दोख दे रहत, नानक कोड मदे को ऐसा परस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते होए भिन्न, कर्म करत हो वह नहीं कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछय, केवल भगत कीर्तन संग राचय, मन तन अंतर सिमरण गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक ओह वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मनते मनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मलक होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन पर बोधै, राम नाम आत्म मह सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद पुराण सिमरत बूझै मूल।

जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारै, पस प्रेत मुगत पाथर कौ तारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न

तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसे बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर ताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रख तैसा तन नाओ, आपे करण करा मन जोग, प्राभ भावै सोई फन होग, पसरियो आप होए।

नानक प्रभ कै सतगुरबान श्लोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत समान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस कौ कर्म मंत कहावै जन्म मरै बहु जोन परमावै धन भूमिका जुकरै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुक्त आगै सुख पावै तनवंता होए क्या को गर्भै जा सब किस तनवंता होए कर गर्भावै तृण समान गश संग न जावै बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश सबते आप जाने बलवंत खिरमै होए जाए पसमंत किसे न बदे

श्रम पावे सगले बिरथारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं दरवै हर दरगह कहो कैसे गवे आपस कहो जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्प की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कश होए।

जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हां छूटे सहस खटे लख कौट धावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्त आवे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजै सुपनम नोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बटभागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करण हार इसके हाथ कहाँ बिचार जैसे दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किस कीनो सो अपने

की निंदा ना निपा बहर बहर अवतार अष्टपदी संत के दुखन आ जग है संत के दुखन जम के नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत हो।

सुखन थान प्रस्ट होए। संत कृपाल कृपा जी करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन काग जो लवे। संतन के दुखन सर्प जोन पाई, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाई। संतन के दुखन त्रिस

मछली तड़फड़ाई। संत कदो की भूखा नहीं राजे, जो पावक इधर नहीं त्रापे। संत कदो की छुटे केला, जो बुआर तिन खेत माहे दुहेला। संत का दुखी तरम ते रहत, संत का दुखी सद मिथिया कहत। किरत निंदक का तुरही पया, नानक जो तिस पावे सोई थिया।

दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिसे अपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से सलोक। तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पो जाए। अष्टपदी मानुक की टेक बिरती सब जान, देवन को एक है भगवान।

रोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिगन न लागे कोई, उस्तत मन में का निरंकार, कर मन मेरे सद्व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पे ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद,

तिस की कटिए जब की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूक नानक तिसे न लगे दुख जिसको हर प्रभ मंचित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किससे डरे जैसा साथ ऐसा दिष्टाया अपने कारज में है आप समाया सोधत सोधत सोधत सीजिया गुर प्रसाद।

की तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रचताप उताप अविनाशी नाही किछ खंड तारण तार रहे ब्रह्मांड

धन धन कहे सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए। ए वापार विरला वापार है, नानक ताकै सद बलिहार है। चरण साध के तोय तोय पियो, अरब साध को अपना जियो। साध की तूर करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनेक बिघन ते साधु रखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे।

लिखे का लहन पाहि सब कष्ट तिसकाउ करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न हो जब जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल ए करनी

सचता की रहत सच हृदय सतमुख कहत सच हृदय सचायाकार सच वर्तै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किछ त्रैगुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख मानु की तू प्रीत त्याग तिस ते परे नहीं किछ कोई सर्व निरंतर।

दयाल बख्शन साथ तेरे की चरनी पाओ नानक मन ए अनराओ मनसा पूरन सरना जोग सो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अनद रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए करता के राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सर ग्रस्त में पोगी त्याए त्याए पग तै सुख

वे जाए ऊंच नीच तिसके अस्थान जैसा जना वे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे इक रंग नाना विद की नो विस्तार प्रभ विनाशी एक अंकार नाना चलत करे किन माहे पूरे ओ पूरन सब ठाई नाना विद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ जब जब जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मण नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन

पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहि समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत बचन सा धूप दे, सत्य जन जा के हृदय प्रवेश, सत निरत बुझ जे कोए, नाम जपत ताकि गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मितगत,

विचार करते कि मित ना जाने किया, नानक जो तिस पावे सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पै बिस्माद, जिन बुझा तिस आया स्वाद, प्रभ कै रंग राज जन रहे, गुर कै बचन पदारत ले, ओए दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरह संसार, जन का सेवक सो वड भागी, जन कै संग एक लिव लागी।

सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पे कन्हार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सवतारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बूझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करन करावन तिन मूल पछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभाया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैते निर्भो होए बसाना जिसते उपजा तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको पिन न कहना जाई बुझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु तारे नानक सो सेवक सास सास समारे अपने जन का पर्दा टाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत्र रखे ताकि गतमित कोई न लाखे

दिस प्रगटाया निकी कीरी मह कर रखे पसंद करे लस्कर कोट लाखे जिसका सास ना काटत आप ताको राखत देकर हाथ मानत जतन करत मोपात जिसके कर्तव्य बिरते जात मारे न रखे अवर न कोई सरब जिया का रखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलग विडानी बारंग बार बार प्रभ जपिए पी अमृत ए मंत्र तृपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर

सो जन सरब धोखा दाता, तिसकी शरण सरब सुख पावे, तिसके दरस सब पाप मिटावे, अवर से आनप सगली चार, नानक

सतगुर सिखो नाम तन दे, गुर का सिख बड़ पागी है। सतगुर सिखा हलत पलत सवारे, नानक सतगुर सिखो जिय नाल समारे।

हर हर नाम हृदय सत्य आवे, मन बेचे सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य रास, सेवा करत न होए नहीं कामी, तिसको होत पर आपत स्वामी।

परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जीव का दाता।

गढ़ भागी पाइये, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करन आगाने, मन संतोखा तम पतिया ने, पूरा गुरख यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पे कह हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए।

बानी, निराहार निर्वय सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अनिक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे, सदबलहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, ए हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे बिनास, जा कै मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सचुप दे सेवक को दे, मोह माया के संग न लेप, मन में रखे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक पर मोह दुख तैते नासे, तपत माए ठांड वरताई, अनंत पया दुख न टे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूरन उपदेसे, पहुँचुका निर्भो होए बसे, सगल ब्याद मंते खैनसे, जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जपना मुरारी, थित पाई चुके प्रभगवन, सुन नानक हर हर जसरमन, निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कलातार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभाव बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिंदु जाना ही कोए, सर्व निरंतर एक को सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पै प्रगात साथ के संग, रच रचनाए अपनी कल धारी, अनेक बार नानक बलिहारी, सलोक साथ न चाले बिन भजन, बिख्या सगली चार, हर हर नाम कमावना, नानक ए संसार अष्टपदी, संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रित में उतारो, करण कारण सो प्रभ समरत, दृढ़ कर गहो नाम हरवत,

तन को चार कुंड उठता वै सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुखो नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सोभा को करे पलि करनी सा सोभा पज हर की सरनी।

अगर गए परवान मन पर बोधो हर कहनाई दै दे सावत आवेठाए ताको बिगन न लागे कोई जा कह हृदय बसे हर सोई गलता दी ठाडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन से पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रकाश तित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जमपासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवा गवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनिक उपाव न छूटन हारे सिमरत सास भेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बचत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटा वे मूर्ख मना सुतमीत कुटंबर बनता इनते कहूं तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहूं कवन छुटकार असस्थी रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिंदी ए तिस बुझना बिगाना नाम बिसार नानक पछताना गुर की मतु लहे इयाने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहिम जन्म जन्म के किल बिक जाहे आप जपो अबरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूत सत हर को नाओ सह सुबाई नानक गुन गाओ गुन गाव तेरे उतरस मैल बिनत जाए हो मैं बिक फैल कुहे अचिंत बस है सुखनार सास गुरासर नाम समार छाट से आनब सगली मना साध संग पावे सरसना हर पूंजी संच करो बिहार इहां सुख दर गए जयकार सर्व निरंतर एक को देख कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साला है एक सिमर एको मन आहे एक अस्के गुन गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रभ्या अनेक विस्तार एक ते पए एक रात पराचत गए मन तन अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक इक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभाया परया तो सरनाई फिरत फिरत प्रभाया परया तो सरनाई नानक की प्रभ बेनती अपनी पंक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन चाचै प्रभदान कर कृपा दे वो हर नाम साध जना की मांगो तोर पार ब्रह्म मेर सरदापुर सदा सदा प्रभ के गुण गावो साल साल प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नित एक ओट एक को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोय जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साथ के संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगासन दिन निवलाग बट भागी जप या प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक के मनसा पूरी पई सदगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुकत जन पया जन्म मरण दुख प्रम गया इच पुनि सरदार सब पूरी रब रहया सत्संग हजूरी जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुर प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जे बिकते काडे जन्म जन्म का टूटा गाडे गुरपुरे तत एह बुझाया प्रभ अपना नान जन त्याया साजन संत करो एह काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरे नाम जपावो भगत पाए तर यह संसार मिन भक्ति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निदनाम बूटत जात पाए विश्राम सगल दुख का हो वतनास नानक नाम जपो गुणदास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एहि सुवाओ नेत्रों पे एक दरस सुखोय मन बिगसे साध चरण तोय भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर माया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्प

आद पुरकारण करता भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपे सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन ही तम निर्गुण आर नीच जान। नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर बैकुंठ मुख मोख पाए। एक निमक हर के गुण गाए अनेक राज भोग भोग बढ़ियाई। हर के नाम की कथा मन पाए वो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत। पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास सर्ब सुख नानक परिगास। सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। आपन किया नानका आपे ही फिर जा पष्टपदी। जब कारे कृष्ण दृष्टिता पाप उन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समात बैर विरोध के संकमात। जब इसका बन चिन्ह जापत तब हर सो को किसे व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोका किस को बत परम। आपन खेल आप बरती जा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनि तब बंद मुकुट को किसको गनी। जब एक है हर अगम पार तब नरक जुरु को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सिर्फ सकत कहो कि चाय। जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कवन डर कवन कत डरे। आपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अबनासी सुखापनासन जन्म मरण को कहां बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोय तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अभगत गोचर प्रभे का तब चित्रगुप्त किस पूछत लेका। जब नाथ नंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप आप ये चरजा नानक अपन रूप आप ही उपरजा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहूँ क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण ते कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश ते चल छिद्र लगत को कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे ते किसे भूख कवन तृप्तावे। करन करावन करने हार नानक कर देखा नहीं सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपे परवीन ते भेद कते कहाँ कोचीन। जब अपन आप उड़तारे तो सगन अप सगन कहाँ बिचारे। जय अपन ऊंचा अपने आप नीरा ते कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिसम बिस्मन बिसम रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप।

एक एक भगवंता ते कौन अचिंत किस लागे चिंता जे अपन आप आप पतियारा ते कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच ते उच्चा नानक आपस को आपे पहुंचा जे आप रचियो पर पंच अकार ते गुण में कीनो विस्तार पाप पुन ते भई कहावत को नरक।

सबके मध्य लिप्त रहे। जो किश कहना सो आपे कहे, आज्ञा वे आज्ञा जाई, नानक जा पावे तले समाए। इससे होए सुना ही बुरा, और कहूं कि ने कश करा, आप भला कर तूत अपनी की, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए। इसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक इहु जान, जो जाने तिस दास खोए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का ए स्वाव, जन कै संचित आवन।

जिस लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेक साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे जिन आसनित त्याग उतरंग संत जना की तूर मन मंग आप जोड़ बेनती करो साथ संग गन सागर तरो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज अनंत साथ संग पंच परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित वो नारायणे एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम सलोक साथ के बचलम लीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लो कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय सबद अनाहत वाजय सुन सुन अनत करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात के माते नानक उदरे तिन के साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साथ संग लैन सुपर सन पए गुरुदेव पूरन हुए सेवक के से आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चित सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊंच पाए स्थान।

विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सबके मद सगल से उदास सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख पने।

गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साथ संगठे संत कृपा ते जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रपाई सात चरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत जिन्हें आवे हर

जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाय रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होवे ता इक न चलै नाल किव सचारा हुई है किव कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी हुक्म नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इकना हुक्मी बख्शी सो एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए नानक हुक्मै जे बुझे ता हुक्मै कहे न कोए गावे को ताण होवे किसै तान गावे को दात जाने निशान

मैं चित न आवन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जे तिसदी वडियाई। जो

नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश।

पर भंड जे को कथे ता अंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार विखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरण मत वेद हथियार पहु खलागन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल कड़िए शब्द सच्ची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल।

नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बृद बुद्धदा बृद कर्ता अदो उर्द अर्दं अगं उगहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोजपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदीय भेदीय नामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी चांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं अभ्यंग प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदि स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ते निदाने नमस्तुंग निरनाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग अगंजे नमस्तुंग अपंजे नमस्तुंग अकाले नमस्तुंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृशं नमो सर्व कृशं नमो सर्व रंगे त्रिपंगीय नंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे स्मसं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धन्वासी चरपट शांत त्वे प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूआल छंद त्वै प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अवेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त।

गण प्रणाम निर्भैन काम अत दुत प्रचांड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाट्य अनडंड बाढ़

चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र जाने चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी शांत न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र है परतीस अदिश अदृश अकृश भगवती शांत त्व प्रसाद कथते कि आशिज देश है कि आ भिज पिस है कि आ गंज करम है कि आ पंज परम है कि आ भिज लोक है कि आ दित सोक है कि अवधूत भरण है कि विभूत करण है कि राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुजा है कि अशोक वर्ण है कि सर्वा अपर्ण है कि जगतंग कृति है कि शतरंग क्षत्रि है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपव अनुप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग विहीन है कि एक अधीन है कि रोजिर जाकर ही मैं रिहा कह कि बाघ व्यैब है कि गैबुल गैब है कि अफुल गुनाह है कि सहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांत है के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कणी है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र भावना है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है केसर पत्र काल है केसर पत्र पाल है केसर पत्र हंता केसर पत्र घंता केसर पत्र पेखी केसर पत्र पेखी केसर पत्र काज है केसर पत्र राजा है केसर पत्र सुख है केसर पत्र भुख है केसर पत्र त्राण है केसर पत्र प्राण है केसर पत्र देश है केसर पत्र पेशा है केसर पत्र मान्य है सदैव अंग प्रधान है केसर पत्र जाप्य है केसर पत्र थाप्य है केसर पत्र पान है केसर पत्र मान है केसर पत्र इंद्र है केसर पत्र चंद्र है केसर मंग कलीम है के परमंग महिम है

अजीज उलनिवाज है, गनिमल खिराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, परभुक्त प्रभा है, सुजुक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है, अपेदी अनूप है।

सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्तार सावल शांतवे प्रसाद नमो नरकनासे सदा प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता नरसाकं श्रीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांतत्व प्रसाद।

माल है, गरीब उलखराज है, गरीब निवाज है, हरीफ उसकान है, हिरासु फिकान है, कलंकंक प्रणास है, पृथ्वी प्रवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है।

जमीन उल जमा है, अमीकुल इमा है, करीम उल कमाल है, कि जुरत जमाल है, कि अचलंग प्रकाश है, कि अमितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है, कि अमितो विभूत है, कि अमितो बसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि अमितो अपांग है, मधुपार शांत प्रसाद, मन मन प्रणाम, गुणगान धाम, अरबर अगंज, हर नर

त्रित के तरण है, जाके करण है, मनमान्य है, जग जाने है, सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्ववास्य है, सर्वनाश्य है, करुणाकर है, विश्वंभर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से है, कलखंड से है, परते पर है, करुणाकर है, अजपा जप है, थपा थप है, कृता कृत है, अमृता अमृत है, अमृता अमृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, तरणी त्रित है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, अमृता अमृत है, अजबा कृत है, अमृता अमृत है, नारनायक है, खलकायक है, विश्वंभर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्व पायक है, पव पंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जाप जापन है, अकलम कृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वयात्म है, आत्मवास है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग तामसंग सात रूपे, नमो परम ततंग ततंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो जुद जुदे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोज, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो साध रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, नादंग पिभूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बाघ बंके, अभंगी स्वरूपे, अनंगी नामेत्र भंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अश्री चांद, अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास आकाश अगंज अपंज अलक अपक अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह नाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तुल निवासे अगा निरकामंग विभूते समस्त स्वरूपे को कर्मंग प्रणासे सुतरमंग विभूते सदा सचदानंद सुतरंग प्रणासी करी मुल्क निंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनिमे हरियंग करियंग करी मुलरिमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विपूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं पव सुभंग

परेंगे ब्रह्म में सरा बिशन सच्ची पत अंत फसे जम्बास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है भगत नर फेर न देत रहेंगे कहां भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो भगत ध्यान लगायो नहात फ्री लिये सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो।

कहूं पछा को शीश निवायो। को पुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया उर्ज सब ही जग श्री भगवान को।

नमस्कार ऋषि को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को बल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरे असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान है घट घट के पट पट की जान है जब युद्ध

करुण सुभराता कृभिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को छह करता। श्री अस्तोज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाचत फल पावै सोई। दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ेल सुनै गुंग जो आहे सुरस ना पावई। सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहै हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई। संबत सत्र है सहसपन जय अर्ध सहस।

राम करी महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईया शब्दों ता गावो हरी केरा मन जनी वसाया।

कहे नानक जन सच तजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी।

0: कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एह हुआ समाओ। शब्द से ती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसना दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है, कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव शक्ति आप उपाय कह, करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप विख गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन हुवे मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनो आप करे से होवे एक सिउ लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सार न जानी ततै सार न जानी। गुरु बाजो ततै सार न जानी, तेहि गुणी संसार ब्रह्म सुता सुतिया रहन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया, बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत् पाए जिसनो आनंदन हर लिव लागे, जाग रहन विहानी।
1: माता के उदर में है प्रताल के सो के मनु विसारिये, मनु के विसारिये ए वरदाता। जे अगन में आहार पहुंचावे उसनो के पहुंच सकी, जिसनो अपने लिव लावे अपने लिए वापे लाए। गुरमुख सदा संभालिए, कह नानक वरदाता सो के मनु विसारिये। जैसी अगन उदर में है तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करते खेल छाया। जात इस पहाड़ा ता जमया परवार फला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरे, एह माया जित हर विसरे मो उपजे पाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी, तिनी विचे माया पाया। हर आप मूलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किस से विटो। रहे लोक विलाए ऐसा सतगुरु जे मिले, तिसनों सिर सौंपिए विचो आप जाए। जिदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए, हर आप मूलक है पाग तिना के नानका। जिन हर पल्ले पाए हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा सतगुरु तेरा है जानी। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एह तन तिना मिलिया जिन हर अपे पाणा। कह नानक हर रस मेरी मन होवा वणजारा। ए रसना तोन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए। होरत किते जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए। हर रस बौड़ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाई है सतगुरु मिले जिस आए। कह नानक होर अनरस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरे हर तुम मैं जोत रखी था तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच था तू जग में आया। हर आपे माता पिता को, हर आपे माता पिता जिन जियो उपाय, जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुरु प्रसाद बुझिया ता चलत होवा, चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभ आगमन सुनया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया। हर गाओ मंगल नित नित सखी सोग दुख न व्यापे। गुर चरण लागे दिन सफाके अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी। हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरे है जग में आए, कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा। जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन न वसाया गुरु प्रसादी। हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया, कह नानक यह शरीर प्रवाण होवा। जिन सतगुरु से हो चितलाया, ए नेत्रो मेरे हर तुमने जो तरी। हर बिना वरना देखो कोई, हर बिना वरना देखो कोई। नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप हर रूप नदरी आया। गुरु प्रसाद बुझिया जा वेखा, हर इक है हर बिना वरना कोई। कह नानक नेत्र अंत से सतगुरु मिले दिव दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए। सुन हो सतबाणी जित सुनी, मंत्र हरिया होवा रसना रसमाणी। सच अलख विडाणी ताकि गत मित कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो, सचे सुन नैनो पठाए। हर जीव को पांद रखे बाजा पौन बजाया, बजाया बाजा पौन द्वारे प्रगट किए। दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए, पावनी किना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव ने दिता अंत न जाए पाया। कह नानक हर प्यारे जीव गुफा अंदर रखे वाजा पौन वजाया। एहो साचा सोयला सच्चे कर गावो, एहो साचा सोयला सच्चे कर गावो। गावत सोयला कर सच्चे जिथे सदा सच त्यावे, सचो त्यावे जा तुद पावे। गुरमुख जिना बुझावे, एहो सच सबना का कसम है। जिस बख्श जिस बख्शे सोजन पावे। कह नानक सच सोयला सच्चे कर गावे। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਤ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ।

पूर्वा बोलो जी तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास ताको विघन न को लागे जाकी प्रभा की अरदास अरदास इको ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरख गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सिंह सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याईया जी जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौने लावे ताए सब थाई होए साए दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए साए दसा पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दा जी का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वंड छकिया देग चलाई देग वाही देख के अंडिट किया तिना प्यारियां सच्चियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लवाईयां चरखड़ियां ते चढ़े आ रहे नाल तंचर वाहे गुरुद्वारे की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां सिखी केसर स्वासा संग निभाई धर्म नहीं हारिया तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी बोलना जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारे की पवित्र कमाई दा ध्यान करके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रैत देग देग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाओ दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे पुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल वाले बोलना जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पदा रखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख सतगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दाता जी श्री ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारिया गुरुधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दी सेवा संभाल खुले दर्शन दीदार प्यारे पंथ खालसा जी नूं बख्शिश करो जी निमाणिया दे माण निताणिया दे तां नियोटिया दी ओट गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी धन गुरु नानक साहिब जी महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन तन तन शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सच्चे पातशाह जी आप जी दे पाणे अंदर हुक्म अंदर चार पहर रहण बतीत हुई है सच्चे पातशाह जी अमृत वेले आप जी ने अपने दर्शन दीदार दे के निहाल निहाल निहाल कीता है महाराज जी सचखंड तो चल के तख्तां ते प्रकाशवान होए हो महाराज उपरंत हुक्मनामा सुखमनी साहब जी का पाठ पंजा बाणियों का नितनेम होया है सच्चे पातशाह जी आप जी के सेवका वालों टहलियों वालों आप जी की हजूरी विच विचरदे हैं उठदे हैं बहदे हैं सेवा करदे हैं बेअंत भुला हो जाए आप जी ने बख्श लैना गुरु गरीब निवाज आप जी की हजूरी विच कड़ा प्रसाद की देग हाजिर है सच्चे पातशाह भोग लगाओ भोग लग्या प्रसाद जो भी छके सतना वाहिगुरु वाहिगुरु जी के सच्चे पातशाह पंथ की सदा चढ़ती कला पंजाब की सदा चढ़ती कला सिख पंथ की सदा चढ़ती कला दाता जी आप जी के चरणा कमलों में बेंत संगत अमृत वेले तो हाजरिया भरिया ने सतगुरु जी सब दिया हाजरिया प्रवान करने दसरिया दिया सेवावान हाजरिया प्रवान कारज रास थिर घर वैसो हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की बैज रखी करता रे बादशाह सा सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निरपोवे भजो भगवान साध संगत मिलकी नो दान शरण परे प्रभंत्र जामी नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी।
ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਹੀਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

जिना हर से ती फिर हड़ी तीना जी प्रभ ना ले। ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाल, जिन गुरुमुख प्यारा सेवया तिन को कुम जाया। ओए आप छुटे परवार स्यों सब जगत छड़ाया, गुरु प्यारे हर सेवया गुरु धन गुरु धनो। गुरु हर मार्ग दसया गुरु पुन वड पुनो, जो गुरु सिख गुरु सेम दे से पुन पराणी। जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी, गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पहिया। हर दरगह पहनाइया हर आप गल लाइया, जो गुरमुख नाम त्याय दे तिन दर्शन दी जय। हम तिनके चरण पखाल दे धूड़ कोल कोल पीज। पान सुपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइया, हर हर कदे न चेते ओ जम पकड़ चलाइया। जिन हर नामा हर चेत्या हिरदे उर तारे, तिन जम नेड़ न आवई गुर सिख गुर प्यारे। हर का नाम निधान है कोई गुरमुख जाने, नानक जिन सतगुरु पेटिया रंगरलियां माने।

गुरु रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुरु मन्या तिना भुख सब जावी।

0: सबको पूरा पे होवे घट न कोई आख पत परवाना पिछे पाई ता नानक तोलिया जप महला पहला
1: सुजग नानका सच्चा विखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जना कुदुत पाया।

मंजूर चली चंद्रावर कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ल आया बिंद्रावन में रंग किया कल मैं बेदर्शन हुआ नाम खुदा यला पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे।

0: नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला
1: नाय मन्नाय पतु पुजाय साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सूत महला

मथे टिका तेड़ धोती कखाई हथ फिर जगत का साई नील बस्त्र पैर हुए प्रवान मलेश धान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार उपरिया बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटै ए अना साडा फिटै तन फिटै फेड़ करेन मन जूठे चुरी परेन ओ नानक सच ते आई है सच होवे तो सच पाई।

फंडे बाज ना कोए, नानक फंडे बाहराए को सच्चा सोए। जित मुख सदा सलाई है पागारत के चार, नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार

पाउड़ी, चाकर लगे चाकरी, जे चलै खसमै पाए, हुरमत तिसनो अगली, ओ वजहो भेदूणा खाए। खसमै करे बराबरी, फिर गैरत अंदर

राम बिनवता पूछत कह जियो पाया कवन काजो जग उपजय बिनसय कहो मोहे समझाया देव करहो दया मोहे मार्ग लावो जित पै बंधन टूटै जन्म मरण दुख फेड़ कर्म सुख जी जन्म ते छूटै रहाऊ।

जलावै बसुदा खोद करै दोए चूले सारे मान सुखावै ओए पापी सदा फिरै अपराधी मुख हो अपर सुखावै सदा सदा फिरै अभिमानी सग

खरा सुखाला पहराओ नहीं दगली लगे ना पाला रहाओ। बाल ते सुबापै जे नहों जाया पंचा ते मेरा संग चुकाया। पंच मार पावा ताल दीने हर सिमरन मेरा मन तन पीने पिता हमारा।

आसा। हिंदू तुर्क कहते आए, किन ए रहा चलाई, दिल में सोच विचार कवा दे, भिसत दोजक किन पाई। काजी तै कवन कतेब बखाने, पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर न जानी रहाओ। सख्त स्नेह कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पहाई, जाओ रे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आप नहीं कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार ना छोड़ै, ताते हिंदू ही रही है। शाड़क तेब राम भज बौरे, जुलम कर

ना पूछै काढ़ा हो काढ़ा हो होई। देहोरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई। लाठ छिटकाए तिरिया रोवे हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संता पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होता है जम नहीं हटे गुसाई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे। एक तुके सनक सनंद अंत नहीं पाया। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई। सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। रहाओ तन कर मटुकी मन माहे बिलोई। इस मटुकी मैं शब्द संजोई। हर का बिलोवना मन का बिचारा

जे अत क्रोप करे करताया पापी चीत न राख समाया चिंत भवन मन परे ओ हमारा नाम बिना कैसे उतरस पारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा आशा

रहाओ। ब्रह्म पाति बिसन डारी फूल शंकर देओ, तीन देव पर तख तोर है पर है किस की सेओ। पाखान गाड़ो कै मूरत कीनी दे कै शाती पाओ, जे एह मूरत साची है तो गड़न हारे खाओ। पात पहत अर लापसी कर करा का सार, भोगन हारे भोगया इस मूरत के मुख शार। मालिन भूली जग भुलाना हम।

उगद कहे तन मेरा जम का डंड मूंड मह लागे खिन मैं करे नबेरा हर जन उत्तम भगत सदा वै आग्या मन सुख पाई जो तिस भावै सत कर मन भाणा मन वसाई।

दरी छूटी आशा। हम मसकीन खुदाई बंदे तुम राजस मन पावे, अल्लाह आवल दीन को साहेबो जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरे निवाज गुजारे कलमा पिसत न होई। सतर का बा घट ही पीतर जे कर जाने कोई, निवाज सोई जो न्याऊ बिचारे कलमा अकले जाने। पाचो मुस मुसल्ला बिछावे तब तौ दीन पछाने, खसम पछान तरस कर जी मैं मार मणि कर फीकी। आप जनाए अवर कौ जाने तब होए पिसत सरी की। माटी एक पेख धर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना, कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक बूंद ना बरखै नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परमहंस ले सिधाना। बाबा बोलते ते कहां गए देही के संग रहते, सुरत माहे जो निरते करते कथा वार्ता कहते रहाओ। बजावन हारो कहां गए हो जिन एहो मंदर।

आशा एक तुके चार। सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बेसन महादेव शलिया। मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी, जिन त्रिभवन डसियले गुरप्रसाद डीठी। रहाओ सर्पनी सर्पनी क्या कहो पाई, जिन साच पछानिया तिन सर्पनी खाई। सर्पनी ते आन शूश नहीं अवरा, सर्पनी जीती कहा करे जमरा। ए सर्पनी ताकी कीती होई, बल आ बल क्या इस ते होई। ए बसती ता बसत सरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां सुआन को सिमरत सुनाए, कहा साकत पह हर गुण गाए। राम राम राम रमे रम रही है, साकत स्यो भूल नहीं कही है। राव कौआ कहा कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए। सत संगत मिल बबेक बुध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुआन सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया। अमृत लै लै नीम सिंचाई, कहत कबीर उआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट समुंद सी खाई, तेह रावण कर खबर न पाई। क्या मांगो किश फिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती, तेहे रावण कर दिया न बाती। चंद सूरज जाके तब तरसोई, बैसंतर जाके कपरेत होई। गुरमत रामे नाम बसाई, आस थिर रहे न कतहुं जाई। कहत कबीर सुनहो रे लोई, राम नाम बिन मुक्त न होई। आशा पहला पूत पशैरी माई, गुर लागो चेले की पाई। एक अचंप हो सुनो तुम पाई, देखत सिंह चरावत गाई। रहाओ जल की माशुली तरवर दे आई, देखत कुतरा ले गई बिलाई। तलैरे बैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला। घोरा चार भैस चरावन जाई, बाहर बैल गून घर आई। कहत कबीर जो इस पद बूजै, राम रमत तिस सब किश सूजै। आसा श्री कबीर जियो के, ते पदे अठ दो तुके सत, एक तुका एक इको ओंकार सतगुर प्रसाद। बिंद ते जिन पिंड किया, अग्न कुंड रहाया। दस मास माता उदर राखिया, बहुर लागी माया। प्राणी काहे कौ लोभ लागे, रतन जन्म खोया। पूरब जन्म कर्म भूम बीज नहीं बोया। रहाओ बारक ते बिरद पया, हो ना सो होया। जा जम आए झूठ पकड़।

चेत ढाल पासा, जीवन की आस कर जम निहार सासा, बाजी गरी संसार कबीरा चेत ढाल पासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी रहमत करन, पढ़ी सुनी गुरबाणी सतगुरु जी सोध करके सचखंड दर प्रवान करते हुए सबना जिया दिया हाजरियां प्रवान करके दरों करों गुरसिखी की दात, नाम की दात, तंदुरुस्ती दात सतगुरु जी बख्शिश करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठ है सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे घर नौ निदावे ताए, सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, देग देग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाये। खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे रख आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन देदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो। हे निमाणिया दे मान सतगुरु नितानिया दे ता निहोटिया दे ओट गुरु गरीब नवाज धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी का पावन पवित्र फुरमान है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए दे मां बाप अनुसार गरीब नवाज अज आप जी दियां असीसां रहमतां दे सदकाब जी के हजूर सुभाग जोड़ी श्री राकेश गुरु राज सपुत्र स्वर्गवासी रामा राव गुरु राज अते बीबी लक्ष्मी पद्मश्री बच्ची भूमिका कौर मथारू सपुत्री सरदार उपिंदर सिंह मथारू बीबी अकविंदर कौर मथारू सच्चे पातशाह सुभाग जोड़ी दे आप जी के हजूर आप जी की कृपा सदका आनंद कारज होए हन। गरीब नवाज आनंद कारज की मर्यादा निभाउंदे आप जी के दासरियां पासों बच्चियां पासों बेअंत सूक्ष्म भुलां हो गई आप जी ने कृपा करके नजरअंदाज कर देनिया मुआफ कर देनिया अगे तो सावधानता बख्शिश करके अपने दर कर दी सेवा दे योग आप कर लेना कृपा करनी इस सुभाग जोड़ी दे सिर ते सदा बख्शा भरिया मेहरा भरिया हथ बना करके रखना ग्रिश धर्म दियां खुशियां केड़े सुभाग जोड़ी नूं प्रदान करनी ग्रिश दियां जिम्मेवारियां निभाउण दी आप जी ने मत बुद्ध प्रदान करनी अपने चरणा दी प्रीत और प्रतीत बख्शिश करके नवाजना रहमता करनिया गुरसिखी वाला जीवन बख्शिश करके नवाजना सतगुरु जी कृपा करनी दोहां परिवारां विच बच्चियां विच आपसी प्रेम प्यार इतफाक दी दात बख्शिश करके नवाजना रहमता करनिया गरीब नवाज इस खुशियां दे मौके सुभाग जोड़ी वल्लों आप जी नूं सुंदर पोशाके भेट कीते गए हन आप जिया ने अंगीकार करने लोक परलोक पड़दे कजने बख्शिश कीते भंडारियां विचों कड़ा प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवे रहमता करनिया सतगुरु जी बेअंत संगता ने आप जी के दर घर दियां हाजरियां भरियां तिल फुल भेटावां माया आप जी के चरणा विच अर्पण कीती समूह संगत दियां हाजरियां भेटावां माया सफली करनी सभना नूं दरों घरों चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना अरदासां बेनतियां दर ते प्रवान करनियां रहमत करो पावन पवित्र श्री मुखवाग बख्शिश करके समूह दाराई संगत नूं निवाजना करो जी अखरवाद घाट भुल चुक मुआफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ।

रोगनति अरसो गति जल जोगन्ति बहुपात पचार सत्वर मेरा सदा दयाला मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महासुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गोहो हर नाम का ओला तुझे न लागे ताता चला ऐसा जिन्हें शरण की हंत जिन्हों की विचार दर्शारण की पाई उस महानप्रभु के नाल जुड़िया रहे जिस महानप्रभु की कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कहूं व्याप है उस महानप्रभु के चन्ना नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल उदित होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरवण प्रिय सत्कारयोग ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हों पासो अज दे जिहड़े हम चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरवण प्रिय गुर इतिहासिक इतिहास सरवण प्रिय दासल फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

भगत जना के मन बिसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नाग मनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्हां कोल सुखां दी मनी सुखमनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवार के भी कलेश मुक जाते हैं, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन बिसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी बस जाए वह भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। भुल चुक दिखी मां गुरु बख्शिश करे रहमत करे, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭਨਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ।